0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
14: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
15: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइट रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पौंड ब्रेडफोर्ड 9627229627222
14: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
16: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
17: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
16: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
17: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
18: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
19: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM एंड ऑनलाइन
2: लिसन ऑन योर पीसी और लैपटॉप द बेस्ट एशियन म्यूजिक ऑनलाइन
3: You're listening to
17: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Yeah, I ain't Jaloux, but David's flew Goliath. This very same place that we be at. Passing through the same of times, this land been a victim of countless crimes. From crusaders, mongers, to the present aggression. Then the Franks, now even a cruel oppression.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
12: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर
4: बड़े से बड़े कंपनी के अकाउंट तक।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

सरकार के जो आशिक हैं बुजुर्गाने दीन के लिए, ख्वाजा साहब के लिए, बाबा साहब के लिए, इस शेर में ये बताया है कि सरकार के जो आशिक हैं बुजुर्गाने दीन के लिए।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 488 777
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑक लेन BD9 4QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
15: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, उम्मत को वो आका के लिए तोड़ रहा था। कंकर भला देते नहीं, आका की गवाही, सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा था।

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 777
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
15: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
14: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
15: मैनिंगम सुपर स्टोर
16: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
17: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
16: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
17: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
18: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
19: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटली हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM?

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488877
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
14: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
15: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पौंड ब्रेडफोर्ड 9627229622 9627222
14: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
16: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
17: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
16: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
17: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
18: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
2: Listen on your PC or laptop The best Asian music online
3: You're listening to
19: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम,

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 777।
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
10: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
11: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
10: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
11: बालियां अंगूठियां और हार
10: जो दुल्हन करे सिंगार
11: आज ही मामू काके की दुकान
10: खालिस सोने की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
10: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
11: आपकी शान
10: हमारी आन
11: क्वालिटी की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
12: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
11: सोफी ज्वेलर्स
12: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
11: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
13: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
14: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
15: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
17: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
0: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोहित रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं मोहित रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोहित रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मोहित रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। मैं मोहित रिजवी।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
9: यू आर लिसनिंग टू
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77।
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
3: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
4: बालियां अंगूठियां और हार
3: जो दुल्हन करे सिंगार
4: आज ही मामू काके की दुकान
3: खालिस सोने की पहचान
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
4: आपकी शान
3: हमारी आन
4: क्वालिटी की पहचान
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
5: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
4: सोफी ज्वेलर्स
5: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
4: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 0127
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 488 777
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
2: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
1: बालियां अंगूठियां और हार
2: जो दुल्हन करे सिंगार
1: आज ही मामू काके की दुकान
2: खालिस सोने की पहचान
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
1: आपकी शान
2: हमारी आन
1: क्वालिटी की पहचान
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
3: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
1: सोफी ज्वेलर्स
3: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
1: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD9 4QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
2: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
5: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
2: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
5: मैनिंगम सुपर स्टोर
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75%?

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274

0: 4888877।
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
0: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
0: बालियां अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
0: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95VR, 01274-491-442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
4: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
4: 07548419678।
3: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: 1413 AM and online।
10: उसी का हुक्म जारी है ज़मीनों आसमानों में और उनके दरमियाँ जो हैं मकीनों में मकानों में। हवा चलती है बागों में तो उसकी याद आती है, सितारे चांद सूरज हैं सभी उसके निशानों में। उसी के दम से तय होती है मंजिल ख्वाब हस्ती की, वो नाम एक हर्फ नूरानी है ज़ुल्मत के जहानों में। उसी के पास इस सारे जहाँ का इल्म है सारा, वही बर्पा करेगा हश्र आखिर के मकानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है, वो सुन सकता है राजों को जो हैं दिल के खजानों में। बचा लेता है अपने दोस्तों को खौफ बातिल से, बदल देता है शोलों को महकते गुलसितानों में। मुनीर, इस हम्द से रुतबा अजब हासिल हुआ मुझको, नज़ीर इसकी मिले शायद पुरानी दास्तानों में। उसी का हुक्म जारी है ज़मीनों आसमानों में और उनके दरमियाँ जो हैं मकीनों में मकानों में। मौज़े समीन कराम, इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे ऑनलाइन, और यही नशियात पहुँचती हैं डैब के ज़रिए आप तक। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया कि ऑनलाइन भी हमारी नशियात से आप लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपने अपने फ़ोन पर खा वो स्मार्टफोन है या एंड्रॉयड है हमारा ऐप डाउनलोड कर रखा है तो उसके ज़रिए आप हमारी नशियात से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं 24 घंटे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ, हसब अमूल हसब वादा आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा यहाँ पर मौजूद, और हमेशा की तरह पुरुमीद और दुआ को कि आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं बखैरियत हैं, शादो आबाद हैं, और ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ साथ हैं, यानी कि ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के साथ साथ हैं। समझने के नाम, वैसे तो इंतखाब में बहुत सी चीज़ें हम शामिल करते हैं, अमूमन शायरी होती है, खूबसूरत से गीत होते हैं, इसके अलावा क्या होता है, जी हाँ तारीखी वाक़या होता है, साथ ही साथ अशफाक अहमद का जाविया हम पेश करते हैं आपके लिए। आज की छोटी सी ख़ास बात के उन्वान से कोई ख़ास बात हम पेश करते हैं, और कोई ऐसा नुक्ता अगर जहन में आ जाए जो हम चाहते हैं कि आपके साथ शेयर किया जाए तो वो भी सब चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में अमूमन शामिल रखते हैं। लेकिन आज क्या है कि यहाँ यूके में चूंकि बैंक हॉलिडे है, छुट्टी का दिन है, तो क्या ख्याल है आज बस आपको गीत सुनवाते हैं अच्छे अच्छे, आप बैक टू बैक गीत सुनिएगा, इन्जॉय कीजिएगा खूबसूरत से मौसम को भी और ख़ूबसूरत से गीतों को भी। तो सामीन कराम, आज ज़्यादातर कोशिश यही होगी कि आपके लिए गीत पेश किए जाए, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। स्टूडियोज़ का नंबर है 01274306677, ये हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है, इसके ज़रिए आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो अब आपको एक खूबसूरत सा हम गीत सुनवाते हैं, शुरू करते हैं, लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगे।

जी समीने कराम, खूबसूरत सा आपने गीत सुना, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। गीत बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था, और बिल्कुल सही बात कही कि जी वो क्या कहते हैं ना कि यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। तो ऐसा ही होता है कि जब कोई अकेला इंसान हो तो ज़ाहिर है सफ़र कटना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई साथ हो तो फिर बड़ी आसानी के साथ सफ़र कट जाता है। वक्त का पता ही नहीं चलता कहाँ गया। इंसान बातचीत करता है, इंसान एक दूसरे से अपने ख्यालात का इजहार करता है, इंसान कोई मौजू छिड़ जाता है, उस पर कोई बहस शुरू हो जाती है या और कोई बातचीत होती रहती है। वैसे भी इंसान को हौसला हो जाता है कि जी कोई और भी आपके साथ सफ़र कर रहा है, आप अकेले नहीं हैं। तो अकेला सफ़र मुश्किल होता है, किसी के साथ सफ़र बड़ा आसान हो जाता है, खा वो खट्टा मीठा हो, यानी कि कभी लड़ाई कभी झगड़ा कभी कुछ, तो ये चलता रहता है। लीजिए अब इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा।

जी समीने कराम, एक और खूबसूरत सा गीत आपने सुना, उम्मीद करते हैं पसंद किया होगा। अब चलते हैं हम अगले गीत की जानिब। अगला गीत जो है किसके लिए पेश कर रहे हैं हम? जी हाँ समीना साहिबा, आप प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं, साथ ही साथ नाहिद साहिबा आप भी प्रोग्राम को सुन रही हैं। तो समीना साहिबा और नाहिद साहिबा, आपकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी का गीत जो है वो आप दोनों के लिए हम पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस गीत को आप पसंद करेंगी, तो लीजिए इस गीत को सुनिएगा।

जी हाँ सामीन ने कराम, बड़ी जल्दी गीत ख़त्म हो जाता है और अच्छे गीत जो हैं वो शायद ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और वही वो भी पुकार रहे थे कि जी कोई साथी हो तो हम सफ़र हो, तो फिर यकीनन सफ़र जो है बड़ी आसानी के साथ कट जाएगा। तो चलिए अब इस खूबसूरत से गीत को हम सुनते हैं, लीजिए इसे सुनिएगा।

कर गया कोई फर्क नहीं अलमचा कोई फर्क नहीं अलमचा कोई फर्क नहीं अलमचा कोई फर्क नहीं।

अकेले कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

0: to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
8: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488 8777
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार

0: दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD94QU 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online. Listen.

जी, बहुत ही खूबसूरत सा सविनय कलाम आपने गीत सुना। उम्मीद करते हैं कि पेश किया होगा जका साहिबा, आपके लिए हमने पेश किया था। बहरहाल एक और खूबसूरत सा गीत हमने आपके लिए क्यू करके रखा है इस गज़ल के बाद और कमर्शियल ब्रेक के बाद आपके लिए हम पेश करेंगे। तो हमने आपको बताया था सविनय कलाम जब्बार वासिफ़ साहब जो हैं वो खूबसूरत सी उनकी शायरी हमारी नज़र से गुजरी और हमने जब उसको मतलब देखा पढ़ा जाहिर है तो बहुत ही हमें अच्छी लगी। और यकीन कीजिए कि बड़ा खूबसूरत उसमें कलाम है, बहुत ही एक एक शेर जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है और तस्वीर पेश करता है आजकल के मुआशरे की। जब्बार वासिफ़ साहब क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, वही मुसाफिर मुसाफिरत का मुझे करीना सिखा रहा था, वही मुसाफिर मुसाफिरत का मुझे करीना सिखा रहा था, जो अपनी छागल से अपने घोड़े को आप पानी पिला रहा था। सड़क किनारे ज़मीं पे बैठा तबाह बर्बाद एक नजूमी, ज़रा गौर से सुनने का शेर है ये और उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है कि जो इन चीज़ों पे यकीन रखते हैं। सड़क किनारे ज़मीं पे बैठा तबाह बर्बाद एक नजूमी दमकती कारों में आने वालों को उनकी किस्मत बता रहा था। सुना है कल रात मर गया वो बरहना दरवेश झोंपड़ी में, सुना है कल रात मर गया वो बरहना दरवेश झोंपड़ी में, फना के बिस्तर पे जो बका की हरीस गदड़ी बिछा रहा था। मेरी नज़र में वो तिफले मस्जिद के पेशवा से भी मोहतरम है, बहुत खूबसूरत शेर है ये। मेरी नज़र में वो तिफल मस्जिद के पेशवा से भी मोहतरम है, जो एहतरामन गली से गंदम के बिखरे दाने उठा रहा था। बहुत मुकद्दस थे उस स्याही की दोनों आँखों के सुर्ख डोरे, बहुत मुकद्दस थे उस सिपाही की दोनों आँखों के सुर्ख डोरे, जो सोई मखलूक की हिफाजत में ख्वाब अपने गवा रहा था। क्या कहने हैं, तमाम शब उसके भूखे बच्चों ने जाग कर ही गुजार दी थी, तमाम शब उसके भूखे बच्चों ने जाग कर ही गुजार दी थी, खुद ही के फुटपाथ पर जो गुर्बत थपक थपक कर सुला रहा था। दुखों के गारे में हाथ लुथड़े हुए थे मेरे हुनर की, लेकिन मैं रोते रोते भी मुस्कुराता हुआ कोई बुत बना रहा था। जो बाद मुद्दत मिले तो आंखों की कसम पुसरी का ये था आलम, वो अपने आंसू छुपा रही थी, मैं अपने आंसू छुपा रहा था। वो मेरी बरसी पे मेरी मैयत के नाम शाम गजल थी वासिफ, मैं अपनी तुर्बत में लेटे लेटे कलाम सबको सुना रहा था।

0: जी हाँ, सामीन कराम, धोखा दही जो है वो दुनिया में बिल्कुल आम है, लोग धोखा देते रहते हैं। और वाकई कहने की बात सुना तो यही है कि धोखा जो भी देता है धोखा वापस मुड़ के उसके पास आता है। उसका चक्कर कुछ इस किस्म का है कि वो जो शख्स देता है ना उसी शख्स को धोखा मिलता है। यानी कि कहने का मकसद ये है। अब ये तो धोखा देने वाले जाने कि उनके साथ फिर वापस ऐसा होता है या नहीं होता है, ये तो हम नहीं जानते हैं। बहरहाल आप समाप्त फरमा रहे हैं ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो की नशरियात 1413 AM पे। डैब के ज़रिए भी ये नशरियात आप तक पहुँचती हैं। ऑनलाइन भी आप इन नशरियात को सुन सकते हैं। इसके अलावा आपका स्मार्टफोन है या आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो दोनों के ऊपर आप हमारा ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके क्या होगा, जी हाँ, आपके पास अगर नेट मौजूद है तो आप हमारे प्रोग्राम से 24 घंटे लुत्फ़अंदोज़ भी आप हो सकते हैं। यानी मिस नहीं करेंगे आप कुछ भी, जो भी प्रोग्राम यहाँ पे पेश किए जाते हैं आपके लिए, आपके ज़ौक़ की तस्कीन के लिए। गीत होते हैं खूबसूरत से खूबसूरत सी, शेर व शायरी होती है, जैसे कि आज हमने आपको जब्बार वासिफ़ की बहुत ही खूबसूरत सी एक गज़ल सुनाई, जिसका एक एक शेर जो था बड़ा वो माने रखता था और बहुत वो बड़ी खूबसूरती से माशरे की तस्वीर को पेश किया उसने, कि वो नजूमी जो इतने लोगों को किस्मत का हाल बताता है, इतने अच्छे अच्छे लोगों को, खुद बेचारा जो है वो फुटपाथ पे सड़क पे बुरे हालों में पड़ा होता है। तो अगर खुद उसे अपनी किस्मत का पता हो तो वो सबसे पहले तो अपनी किस्मत को बदल ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हम लोग अकल के इतने क्या क्या कहिए कि बस पूरे पूरे हैं कि हम फिर भी ऐसे ही लोगों के पास जाके अपनी किस्मत का हाल मालूम करते हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, सिर्फ वही जानता है। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं, मिलते हैं आप इसके बाद।
1: 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online. You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is.
5: And the winner is.
6: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, पॉन्ड ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

जी हाँ सविनय कराम, जाने दिया करें, कुछ हो जाए छोटा मोटा तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर देना चाहिए। हाँ, बड़ी बातें इग्नोर नहीं हो सकती, छोटी मोटी बातें इग्नोर होके ही काम चलता है। लीजिए अब इस गीत को सुनिएगा।

0: Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
7: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 488 77।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
9: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
10: बालियां अंगूठियां और हार
9: जो दुल्हन करे सिंगार
10: आज ही मामू काके की दुकान
9: खालिस सोने की पहचान
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
9: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
10: आपकी शान
9: हमारी आन
10: क्वालिटी की पहचान
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
11: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
10: सोफी ज्वेलर्स
11: सोफी नहीं सोफी

0: नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
1: सोफी ज्वेलर्स 121 ओक लेन BD9 4QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.

0: Oggi è l'anime sertiero.
1: जिस समय ने कहा हम आजकल जो मौसम है शादियों का मौसम है, यहाँ पे बहुत सी शादियाँ हो रही हैं या होने जा रही हैं, तो सबके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सी नेक तमन्नाएं। और जैसे गीत में कहा गया कि जी मेहंदी का रंग जो है वो माँ की दुआओं का रंग होता है। माँ बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करते हैं। यही दुआ होती है कि औलाद हमेशा खुश रहे, बेटी जिस घर में जा रही है वहाँ पर उसको इज्जत मिले, खुशियाँ मिले उसको, और उनकी ज़िंदगी जो है नई आने वाली ज़िंदगी वो फले फूले। तो ये सभी जो माँ बाप होते हैं जहाँ कहीं भी हों, जो भी हों, उनकी दुआ यही एक ही सी होती है सब माँ बाप की। लीजिए अभी एक और बहुत खूबसूरत सा गीत हम सुनते हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो पर।

0: Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
12: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online।
9: जी हाँ सामीन, आप समाप्त फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशरियात। 1413 AM पे ऑनलाइन और डैब के ज़रिए भी ये नशरियात आप तक पहुंच रही हैं। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। स्टूडियोज का नंबर है 01274306677। लीजिए अब एक और हम आपको खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं, सुनिएगा।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
12: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
12: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
13: बालियां अंगूठियां और हार
12: जो दुल्हन करे सिंगार
13: आज ही मामू काके की दुकान
12: खालिस सोने की पहचान
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स से श्री फ्लाई

0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
0: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर। रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज।
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज।
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज।
0: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
4: Pakistan Jewelers ki janib se sabhi sunne walon ko dil ki gehraiyon se Eid Mubarak. Quality ki pehchan.
5: Pakistan Jewelers, 1 Dupont Lane, Bradford, PD95VR01274491442.
4: Pakistan Jewelers.
2: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
12: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 777।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
12: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
12: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
13: बालियां, अंगूठियां और हार,
12: जो दुल्हन करे सिंगार,
13: आज ही मामू काके की दुकान,
12: खालिस सोने की पहचान,
13: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
12: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
13: आपकी शान
12: हमारी आन,
13: क्वालिटी की पहचान।
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
14: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
13: सोफी ज्वेलर्स?
14: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टार।

0: Sophie Jewelers, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014. Sophie Jewelers.
1: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229627222।
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: Thank you.
1: नेहा, कल जो गलती की उसे दोहराऊंगा नहीं। आज फूल और खत दोनों तुम्हारे हाथ में हैं। जो बात कल मेरा फूल नहीं कह पाया वो आज ये खत कहेगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो नेहा। अगर तुमने फूल रख लिया तो मैं समझ लूंगा कि मैं भी तुम्हें
0: किसने दिया

0: श्रीमान बिरजू जी, जानकर खुशी हुई कि हम आपको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और अपनी गलती मानने की हिम्मत रखते हैं सबके सामने। हम ये तो आपसे होगा नहीं, इसलिए ये फूल आप ही रख लें।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: मुबारक ईद मुबारक।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स की जानिब से सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dupont Lane, Bradford, PD95ER01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: And the winner is
7: your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटली हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पर तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर उसके बाद आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस महफिल गज़ल उसने छेड़ी की जीनत तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे।

और दोस्तों, अब हम आप सबको आज के इस गर्म तरीन दिन में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी इंतहाए गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। इब्तिदा उसके नाम से जो हम सबका मालिक है, खालिक है, पालनहार है, राजिक है, वही जिसने हमें बेशुमार नियामतों से नवाजा है, वही जो हमारी छोटी से छोटी ख़ता और बड़ी से बड़ी गलती को देखता है, सुनता है और उसे दरगुदर करने की कुव्वत रखता है। यकीनन वो हम सब का रब है।

दोस्तों हमारे अहवाल तो ये हैं कि आज जैसा कि आप जानते हैं लॉन्ग वीकेंड है और मंडे को छुट्टी है। पूरी बिल्डिंग में मेरे ख़्याल में वाहिद हूँ जो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। गर्मी का अहवाल कुछ यूँ है कि जब मैं ड्राइव करके आप तक पहुँच रहा था तो 32 सेंटीग्रेड था, यहाँ स्टूडियो में 34-35 सेंटीग्रेड है। सो मैं प्रोग्राम आप तक पहुंचाने से पहले मैंने बंदोबस्त किया कि इस गर्मी का कैसे सिलसिला रोका जाए। सो मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है, पूरा पीछे की खिड़की पूरी खोली हुई है और कूलर जो नाम का होता है लेकिन बहुत मदद करता है, और ठंडे पानी की कई बोतलें लाकर रख ली हैं ताकि आपका हमारा साथ आसानी के साथ गुजरे। बस दुआ फरमाइए। 34 है इस वक्त यहाँ स्टूडियो में, यस 34-35। सो इतनी ज़्यादा गर्मी में प्रोग्राम करना और आपसे बात करना, इसके लिए आपकी दुआओं की ज़रूरत है। गज़ल उस नशेरी का आगाज़ उसके नामे नामी से हो चुका है जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कहकर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से किसी भी वक्त किसी भी लहजा किसी भी

इंसान किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ, किसी भी परेशानी, किसी भी मुसीबत में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों, सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मानते एक ही से हैं, और बेशक वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है। जैसा कि आप जानते हैं, गज़ल उसने छेड़ी का आगाज़ हम हमेशा एक हसीन गीत के तोहफे के साथ कर सकते हैं, और वो किया करते हैं हज़ब रिवायत, एक हसीन गीत जिसे मैं करता हूँ अपने उन अहबाब के नाम, मोहब्बत करने वालों के नाम, प्यार करने वालों के नाम, कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है, और जिनकी आमद की वजह से हम इस कदर जो यहाँ ब्रेडफोर्ड में 19 पता नहीं कितने के बाद 44 के बाद गर्म तरीन दिन है आज यहाँ पर, 32 से 34 तक होने का इम्कान है। हमारे स्टूडियो में तो अल्हम्दुलिल्लाह 34 है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कुछ कुछ। बहरहाल, आप हैं, हम हैं, और आपका प्रोग्राम है गज़ल उसने छेड़ी। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो अहबाब यहाँ से तशरीफ़ लाए उनके हम तारुफ कराएंगे उस हसीन गीत के तोहफे के बाद जो आपके लिए मुंतखब किया है। पेज पर आने वाले हमारे मोहब्बत करने वाले, हमारे प्रोग्राम से चाह रखने वाले नज़ीर अहमद साहब लैया पंजाब से तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, और इस गर्मी में प्रोग्राम करते हुए एक फरत बख्श झोंका है आपकी आमद, ये आपकी मोहब्बत है। अल्लाह आपको नज़ीर अहमद सलामत रखे, सेहत से रखे, और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आइए आज आगाज़ करते हैं इस हसीन गीत के तोहफे से, आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम, और फिर उन अहबाब के नाम जो यहाँ मकामी तौर पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रॉडफर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर के ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस खूबसूरत गर्मा गर्म गर्म तरीन दिन में गज़ल उसने छेड़ी की शान बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। 01274306677 पर गज़ल उसने छेड़ी की शान बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। 01274306677 पर

शेड में बैठिए, छांव में बैठे, और बाकी ये है कि बस अल्लाह का बड़ा करम है। ये मौसम तो भाई कभी कभी मिलता है लोगों को, जो बहुत खुश हैं अहबाब अपनी फैमिलीज के साथ सी साइड गए हुए हैं, उन्हें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। कमर्शियल का वक्फ़ा।

रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
12: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
11: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
12: बालियां अंगूठियां और हार
11: जो दुल्हन करे सिंगार
12: आज ही मामू काके की दुकान
11: खालिस सोने की पहचान
12: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
12: आपकी शान
11: हमारी आन
12: क्वालिटी की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकफट लेन ब्रैडफोर्ड BD95VR 01274491442
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
14: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway

0: Rider, helping you secure your future.
1: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: और आइए दोस्तों, हम आपको हडर्सफील्ड की खूबसूरत वादी में लिए चलते हैं, जहां आज मौसम ने पूरे बरतानिया की तरह कहर ढाया हुआ है। और उनका कहना यह है, हमारे खूबसूरत लिसनर रियासत साहब का, कि रिफत भाई, इस वक्त 33 टेम्परेचर है, हम लोग गार्डन में बैठे हुए हैं और डबल कैनेपी हमें लगाना पड़ी है, इसलिए कि ज़रा सा धूप में जिस्म का कोई हिस्सा निकल जाए तो ऐसा लगता है कि आग लगा दी किसी ने। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हाल है आज की कड़ी धूप का और आज के गर्म तरीन दिन का लोगों पर असर। हम आपको और आपके अहल खाना को रियासत साहब दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, बहुत एहतियात कीजिएगा। और मुझसे पूछ रहे थे कि नमकीन लस्सी बना रखी पीनी है, यार मैं पीता ही नमकीन लस्सी हूँ। अब आपने क्योंकि याद दिला दिया है तो मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम करके जब घर पहुंचूंगा तो आज मैं नमकीन लस्सी ज़रूर बनाऊंगा, मुझे भी बहुत पसंद है। अब तो ऐसा करें, एक गिलास नमकीन लस्सी मेरे नाम की आप ख़ुद पी लें, और आपके नाम का जो गीत है जो आपने अपने महबूब फनकार खान साहब मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ में आज के इस गर्म तरीन दिन के लिए मुंतखब किया है, वो मैं आपकी और आपके अहल खाना की नज़र कर रहा हूँ। लस्सी पीना ना भूलिएगा मेरे हिस्से की। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सेहत से रखे और यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे।

और आइए दोस्तों, अब हम आपको गज़ल उसने छेड़ी के अगले मेहमान की जानिब लिए चलते हैं, जो हैं वकार साहब। और वकार साहब ने भी बड़ा अकल मंदाना और दानिश मंदाना फ़ैसला ये किया है कि इस गर्म दिन में बजाय इसके कि रिस्क लिया जाए फैमिली को कहीं घुमाने ले जाकर, अपने घर में खैरवाफियत के साथ बैठा जाए। बहुत अच्छा किया आपने, बल्कि मैं आपको पता है कि बच्चों की भी छुट्टियां हैं, उनके वालदैन से भी यही दरख्वास्त करूंगा कि कोशिश करें कि बच्चों को अगर पार्क लेके जा रहे हैं तो वो बच्चे सिर्फ उस इलाके में खेलें जहां दरख्तों की छांव हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल रखें। रही बात हमारे वक़ार मियाँ की वेकफील्ड में, तो वक़ार मियाँ कहते हैं कि मैं तो बहुत मज़े से ठंडा ठंडा अभी मैंने रूह अफ़ज़ा का एक गिलास पिया है और बना हुआ रखा है ठंडा। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, मेरी जीवन साथी भी कर रही हैं, और मैं एक गीत अपनी बेगम की पसंद का सुनना चाहता हूं, अगर आप प्ले कर दें। यार ऐसी बातें नहीं किया कि ये दिल तोड़ने वाली, ये तो प्रोग्राम आप ही लोगों का प्रोग्राम है, और आप ही की फरमाइश और आपके पसंदीदा गीतों से सचता और बनता है। अल्लाह ताला आपकी, आपके अहल खाना की और आपकी जीवन साथी की हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और ये मोहब्बत यूं ही कायम हो, दायम रखे। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए। वक़ार आमद का बहुत शुक्रिया।

मैंने एक तरकीब ये की कि अब पहले तो मैं टैप वाटर ठंडा पीता रहा, दो बोतलें ख़त्म हो गई, ये तीसरी बोतल अभी भर कर लाया हूँ, जग भर के मैंने फ्रिज में रख दिया और उसमें से लाता रहूँगा। और ये देखिए, सुभान अल्लाह, खूब ठंडा पानी है, लुत्फ आ रहा है। आप भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखिएगा, मैं तो पीता ही पानी हूँ, खैर आपको पता है कि मैं किस कदर ज़्यादा पानी पीता हूँ, मेरी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है ये। आपको लिए चलते हैं हम अपने लीज, जहाँ मौजूद हैं हमारे बड़े मोहतरम लिसनर जनाबे भगत सिंह साहब। उनका कहना है कि सर जी, गर्मी ने बैजा बैजा करा दी है, आप ही की नहीं कराई, हमारी भी हवा, सबकी जो अहबाब इस वक्त सुन रहे हैं उनकी निकली हुई गर्मी, हम लोग अब इस काबिल रहे नहीं मेरा ख्याल यहाँ के मौसम में कि इस कदर शदीद गर्मी का शिकार हों। लेकिन ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, बेशुमार बीमारियों से निजात देती है ये गर्मी, बाईस आज़ाद तो बाद लोगों के लिए हुआ करती है लेकिन बेशुमार बीमारियों का इलाज भी है, अल्लाह ताला ने इसमें भी शफा रखी है। तो बहरहाल हम आपको भगत सिंह साहब दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, और आपने जो खूबसूरत गीत मुंतखब किया है, ख़ुद मुझे इसे सुने हुए बरसों हो गए थे, आपकी पसंद की दाद देते हुए आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं, अहले लीज को मेरा सलाम पहुँचे।

0: और ये तोहफा था बेबी डॉल में सोने दी, जिसे यहाँ ब्रेडफोर्ड की हमारी प्यारी सी बावची खाने की रानी बिटिया सुमेरा ने अपनी कजन्स मिडिलसब्रा में भेजा था। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bedfordasianradio.co.uk पर। कमर्शियल के बाद हम आपका पसंदीदा सेगमेंट वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और इसमें हम खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करते हैं अपनी उन ख्वातीन शुआरा को कि जिन्होंने नई जहते तराशी, नए अंदाज सोच और फिक्र के लोगों तक पहुंचाए।
1: 1:03 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online. You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1:03 AM and online.

0: रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अतागराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
4: Pakistan Jewelers ki janib se sabhi sunne walon ko dil ki gehraiyon se Eid Mubarak. Quality ki pehchan.
5: Pakistan Jewelers, 1 Dupont Lane, Bradford, PD95VR01274491442.
4: Pakistan Jewelers.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
13: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
7: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
8: और दोस्तों, अब वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट, और वो है वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। आज हमारी मेहमान वो शख्सियत है जिनको पाकिस्तान की पहली खातून शायरा होने का एजाज़ हासिल हुआ और जिनका कलाम पहली बार तबा मजमुआए कलाम शाया हुआ। ये वो शायरा हैं, दिखावा बनावट और तसन्नों से दूर, बहुत ही पर्दादार माहौल की पली बड़ी ये शायरा। उस ज़माने में निसाइयत का लहजा लेकर अदबी मैदान में उतरी, जब ख़वातीन को शायरी में उनकी कोई अहमियत नहीं थी, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाता था, पाबंदियाँ थीं सौ किस्म की। और ये बड़ा कमाल था कि मर्दों के दरमियान कोई खातून इतनी जुर्रत करें कि बैठकर मुशायरा पढ़ें। वैसे भी मैंने आपको बताया कि ये बेइंतहा मुनकसरुल मिजाज खातून थी, और अदा जाफरी ने बहुत कम मुशायरे पढ़े हैं, मुशायरों में शिरकत उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बहरहाल वो गाहे बगाहे मुशायरों में शिरकत ज़रूर किया करती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें यह एज़ाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान की पहली मकबूल, हर दिल अज़ीज़ और महबूब शायरा हैं जिन्होंने जुर्रत की और जिनका कलाम सबसे पहली मर्तबा पाकिस्तान में छपा। इसीलिए इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ उर्दू पोएट्री भी कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको बेशुमार एजाजात से भी नवाजा गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड की जानिब से, और दुनिया के बहुत से इलाकों में, नॉर्थ अमेरिका से भी आपको अवार्ड से नवाजा गया। और क्योंकि बहुत कम मुशायरों में शिरकत करती थी, तो मैं उनका बहुत सा कलाम तो नहीं जमा कर पाया हूँ, बहरहाल मैं अपने बैकग्राउंड की हेल्प से उनका जितना कलाम मुझे मिला है वो मैं आप तक पहुँचा दूँगा। मैंने आपको बताया कि अदा जाफरी साहिबा को मुशायरों में शिरकत बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो बाकायदगी के साथ लोगों की दावत को कबूल कर लिया करती थी और मुशायरों में जाती थी। आपने उनकी शोहरा आफाक गज़ल होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए, उनका हर शेर, हर गज़ल और हर सोच, हर फिक्र एक से बढ़कर एक होती थी। हमारी बदनसीबी यह है कि 2015 में अदा जाफ़री साहिबा इस जहान फ़ानी से कूच कर गईं, लेकिन वो अपनी शायरी का इस कदर खूबसूरत सरमाया हमारे हमराह छोड़ गई हैं कि जो हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे उनके खूबसूरत कलाम से, उनके बाद उनकी पैरवी में और उनकी हिम्मत और जुर्रत की वजह से बहुत सी ख़वातीन ने शायरी के मैदान में कदम रखा और फिर नाम बनाया। लेकिन ये एज़ाज़ के पाकिस्तान की पहली साहिब किताब मजमूए कलाम छपने का एज़ाज़ और पहली शायरा होने का एज़ाज़ भी अदा जाफ़री के पास था, है और रहेगा। आइए हम सब मिलके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोहतरमा अदा जाफ़री साहिबा के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। हमारी आज की मेहमान मोहतरमा अदा जाफ़री मरहूमा।
9: मुसाफिर लम्हा चौखट पर खड़ा है, मुसाफिर लम्हा चौखट पर खड़ा है, मैं इतना तो जबीने वक्त पर तहरीर कर जाऊं, मैं इतना तो जबीने वक्त पर तहरीर कर जाऊं। अनासिर से अभी इंसान बड़ा है, अनासिर से अभी इंसान बड़ा है। एक मुख्तसर सी नज़्म है फ़लस्तीन के हवाले से, ताज़ा नज़्म है, इसका उन्वान है सफ़र बाकी है। बयाज़ वक्त में लिखी हुई निज़ाम में जबर की तमाम दास्तां किसी को हम सुनाएं क्या, बयाज़ वक्त में लिखी हुई निज़ाम में जबर की तमाम दास्तां किसी को हम सुनाएं क्या, बताएं क्या गुबारे दर्द में अटे हमारे बामो दर, गुबारे दर्द में अटे हमारे बामो दर, हमारे जख्म जख्म के गुलाब और स्याह रोज़ शब के माह आफ्ताब, और स्याह रोज़ शब के माह आफ्ताब सब गवाह हैं कि हमने क्या नहीं सहा, सऊबतों के दरमियाँ हमारे साथ एक यकी रहा, सऊबतों के दरमियाँ हमारे साथ एक यकी रहा, यकी रहा वो एक ज़ात जो वजूद कायनात है, वो एक ज़ात जो वजूद कायनात है, जो खुद हयात है हमारे साथ है, हमारे साथ है। गवाह ये ज़मीन और ज़मा रहे ना आज सोगवार हैं ना कल ही नौहा खां रहे, शरर जो कल लहू में थे वो आज भी लहू में हैं, हमारे ख्वाब सांस ले रहे हैं आज भी, कोई दिया बुझा नहीं कि हम अभी थके नहीं, कि हम कभी थके नहीं, और एक सदी से दूसरी सदी तलक सफ़र में हैं। यह फ़लस्तीनियों की आवाज़ थी कि हम अभी थके नहीं, हम कभी थके नहीं, ये फ़लस्तीनियों की आवाज़ थी। अब एक ताज़ा गज़ल पेश करती हूँ, और मुझे मालूम है 11 से ज़्यादा बच चुके हैं। जो एक लम्हा फरेब नज़र भी होता है, जो एक लम्हा फरेब नज़र भी होता है, वही तो है जो बसर उम्र भर भी होता है, वही तो है जो एक लम्हा फरेब नज़र भी होता है, वही तो है जो बसर उम्र भर भी होता है। खबर हुई न हुई तेरी बेनियाजी को, खबर हुई न हुई तेरी बेनियाजी को, के जिंदा रहने का अपना हुनर भी होता है, खबर हुई न हुई تیری بے نیازی کو کہ زندہ رہنے کا اپنا ہنر بھی ہوتا ہے. ہم اپنی ذات میں کھوئے ہوئے تیرے بندے, ہم اپنی ذات میں کھوئے ہوئے تیرے بندے, کبھی کبھی تیرے در سے گزر بھی ہوتا ہے, کبھی ہم اپنی ذات میں کھوئے ہوئے تیرے بندے,
10: کبھی کبھی
9: کبھی کبھی تیرے در سے گزر بھی ہوتا ہے. زمین کا رزق جو بنتا رہا وہی آنسو, زمین کا رزق جو بنتا رہا وہی آنسو, ہماری آنکھ میں نجم سحر بھی ہوتا ہے, ہماری آنکھ میں نجم سحر بھی ہوتا ہے. ہمیں سے خاک نشینوں کا احترام کرو, ہمیں سے خاک نشینوں کا احترام کرو, یہیں کہیں کوئی اہل خبر بھی ہوتا ہے, یہیں کہیں ہمیں سے خاک نشینوں کا احترام کرو, یہیں کہیں کوئی اہل خبر بھی ہوتا ہے. اسی سے ہم نے بہت بے وفائیاں کی ہیں, اسی سے ہم نے بہت بے وفائیاں کی ہیں, جو ایک عہد بھی ہوتا ہے گھر بھی ہوتا ہے, جو ایک عہد بھی ہوتا ہے گھر بھی ہوتا ہے. غبار درد سے ہم رسم و راہ رکھتے ہیں, غبار درد سے ہم رسم و راہ رکھتے ہیں, یہاں کہاں کوئی دیوار و در بھی ہوتا ہے, یہاں کہاں کوئی دیوار و در بھی ہوتا ہے, جو ایک لمحہ فریب نظر بھی ہوتا ہے, وہی تو ہے جو بسر عمر بھر بھی ہوتا ہے.
10: آپ کا وقت نہیں, آپ بڑی مشکل سے تو پکڑ میں آئیں.
9: یہ غزل لوٹ پیش کرتی ہوں. حال کھلتا نہیں جبینوں سے, حال کھلتا نہیں جبینوں سے, رنج اٹھائے ہیں کن قرینوں سے, حال کھلتا نہیں جبینوں سے, رنج اٹھائے ہیں کن قرینوں سے. رات آہستہ گام اتری ہے, رات آہستہ گام اتری ہے, درد کے ماہتاب زینوں سے, درد کے ماہتاب زینوں سے, رات آہستہ گام اتری ہے, درد کے ماہتاب زینوں سے. ہم نے سوچا نہ اس نے جانا ہے, ہم نے سوچا نہ اس نے جانا ہے, دل بھی ہوتے ہیں آبگینوں سے, ہم نے سوچا نہ اس نے جانا ہے, دل بھی ہوتے ہیں آبگینوں سے. کون لے گا شرار جا کا حساب, کون لے گا شرار جا کا حساب, دشت امروز کے دفینوں سے, دشت امروز کے دفینوں سے. تو نے مژگاں اٹھا کے دیکھا بھی, تو نے مژگاں اٹھا کے دیکھا بھی, شہر خالی نہ تھا مکینوں سے, شہر خالی نہ تھا مکینوں سے. تو نے مژگاں اٹھا کے دیکھا بھی, شہر خالی نہ تھا مکینوں سے. آشنا آشنا پیام آئے, آشنا آشنا پیام آئے, اجنبی اجنبی زمینوں سے, اجنبی اجنبی زمین. آشنا آشنا پیام آئے, اجنبی اجنبی زمینوں سے. جی کو آرام آ گیا ہے ادا, کبھی طوفاں کبھی سفینوں سے. اور بالکل آخر میں اب ایک حمد کے چند اشعار پر مشاعرہ ختم ہوگا. گیت میرے آہنگ اس کا ہے, گیت میرے آہنگ اس کا ہے, چنری میری رنگ اس کا ہے, گیت میرے آہنگ اس کا ہے, چنری میری رنگ اس کا ہے. انجانی منمانی گلیوں, انجانی منمانی گلیوں, میرے سنگ تو سنگ اس کا ہے, میرے سنگ تو سنگ اس کا ہے. آس نراس کے سارے بندھن,
10: आस
9: निराश के सारे बंधन, आँख का आंसू ध्यान का चंदन, आँख का आंसू ध्यान का चंदन, खुशियों के सब महल दो महले, खुशियों के सब महल दो महले, जख्मों के सब गहने गजरे, जख्मों के सब गहने गजरे मैंने उसको सौंप दिए हैं।
10: वाह वाह वाह वाह वाह।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR 01274 488 77।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
12: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
12: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
13: बालियां, अंगूठियां और हार,
12: जो दुल्हन करे सिंगार,
13: आज ही मामू काके की दुकान,
12: खालिस सोने की पहचान,
13: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
12: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
13: आपकी शान
12: हमारी आन,
13: क्वालिटी की पहचान।
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
14: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
13: सोफी ज्वेलर्स?
14: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
13: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
17: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: उससे पहले कि हम आपको नॉर्थ हॉल लंदन देकर चलें और शहजाद साहब और उनके अहले खाना का तोहफा उनकी नज़र करें, बड़ी खूबसूरत सी एक शख्सियत इस गर्म तरीन दिन में हमारे हमराह मौजूद है और बे इंतहा खूबसूरत इंतखाब के साथ हमेशा हमारे बज़्म की इज्जत और तौक़ीर बढ़ाते हैं। जनाब शकील साहब बर्नले से तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे हमराह ऑनलाइन मौजूद हैं, आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
18: जी वालेकुम

0: दोस्तों हमारे बड़े खूबसूरत सादा मासूम और दिलकश लिसनर जनाब अयूब चौहान साहब तशरीफ ला चुके हैं, थोड़ी सी बात उनसे हो जाए और फिर हम आपको नॉर्थ हॉल्ट लंदन लिए चलेंगे, लेकिन पहले उनकी खूबसूरत बातें और कलाम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रिफत अब्बास भाई, आप ठीक हैं?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप ठीक हैं?
1: मैं ठीक ठाक हूँ।
0: गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है।
1: गर्मी तो है ना, लेकिन पक्खा लगाया हुआ है, दीवार भी है ना गर्मी के लिए।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है।
1: तो पक्खे के सामने बैठा हुआ ना, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: बहुत मोहब्बत।
1: इशार सुनाकर अपना गाना सुनाकर आराम से रोज सो जाऊंगा। और
0: जरूर। अच्छा अच्छा,
1: तो इस तरह गुजरी है, बस बस गुजरी गुजरी होती है ना।
0: जी जी,
1: तो कुछ इशार इस तरह है
0: जी।
1: डॉक्टर विशेष भगत साहब फरमाते हैं
0: जी,
1: खुद अपने आप से शर्मिंदगी सी होती है।
0: अब अपने आप से शर्मिंदगी सी होती है,
1: कभी कभी तो बड़ी बेदिली सी होती है।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: सुलगती धूप गली चांदनी से होती है, तुम्हारे साथ ये दुनिया नई सी होती है।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: गले में उसके हदाया की अजीब बरकत है।
0: आहा।
1: वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो गुनगुनाता है, वो गुनगुनाता है, बल्ले के फूल खिलते हैं।
0: आहा।
1: तमाम घर में बच्ची चांदनी सी
0: होती है।
1: किरण निकलने से पहले गुलाब दिखे हैं।
0: आहा।
1: तुम्हारी याद में वो ताजगी सी होती है।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो मुस्कुराती हुई धूप जैसी आंखों में गुलेरी पलकों के पीछे नीनी सी होती है।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: मेरी गजल किसी पर्दा नशीन का किस्सा है।
0: मेरी गजल किसी पर्दा नशीन का किस्सा है,
1: अगर सुनाऊं तो
0: हुर्मती
1: सी होती है।
0: बहुत खूबसूरत इंतखाब।
1: मैं बोलता हूँ तो इल्जाम है बगावत का।
0: आहा।
1: मैं चुप रहूं बड़ी बेबसी सी होती है।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत उम्दा इंतखाब।
1: एक और है
0: जी, अता कीजिए। अच्छा चले, आपकी मर्जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
1: उसकी बात छुपा के चली आई।
0: अच्छा,
1: जो थी का
0: होटल से बात छुपा के चली। ठीक है, मैंने लिख लिया सर।
1: ठीक है ठीक है,
0: बहुत शुक्रिया आमद का।
1: शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और दोस्तों हम नॉर्थ हॉल लंदन चल रहे हैं और शहरयार साहब आपके और आपके अहल खाना की पसंद लेकर हाजिर हैं। आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और अपने ही ज़मान में रखे।

0: रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अतागराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
4: Pakistan Jewelers ki janib se sabhi sunne walon ko dil ki gehraiyon se Eid Mubarak. Quality ki pehchan.
5: Pakistan Jewelers, 1 Dupont Lane, Bradford, PD95VR01274491442.
4: Pakistan Jewelers.
6: And the winner is...
7: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: और दोस्तों, परदेसी मजीद साहब, आपने ये नहीं बताया कि आपको गीत कैसा लगा। बहरहाल, आपने मुझसे एक सवाल किया है, उसका जवाब मैं दे दूं। हमारे यहाँ मसाजिद ने ऐलान किया है कि 27 मई को यहाँ पर ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, और जाहिर है ईद के दिन हम भी अपने अहले खाना के साथ मौजूद होंगे, तो ईद के दिन तो प्रोग्राम नहीं होगा ना। बहरहाल, आप कब मना रहे हैं हमें बताइएगा। अब हम चल रहे हैं आपको लेकर ये अपने ओल्डहम, जहां मोहम्मद अयूब चौहान साहब मौजूद हैं और सुनना चाहते हैं ये गीत। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं अपने तमाम सामईन से दरख्वास्त करूंगा और नाज़रीन से कि आप नमाज के टाइमिंग ईदुल अज़हा के अपनी अपनी मसाजिद से पता कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। हमारे यहाँ पहली जो जमात है जिस मस्जिद से में मैं जाता हूँ, वो 8:45 पर है और दूसरी 9:30 पर है। तो बहरहाल, जो भी आपको सहूलत हो, अपनी मस्जिद का ज़रूर पता कर लीजिएगा ईद उल अज़हा की नमाज के टाइमिंग्स क्या हैं। तो अब चलते हैं ओल्डहम, और अयूब चौहान साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अयूब चौहान साहब उन खुश नसीबों में हैं कि इनके अहले खाना में से इनकी शरीक हयात और साहबजादे अल्हम्दुलिल्लाह इन साल हज के लिए रवाना हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें खैर वाफियत से लाए। हमारी इन एडवांस हज की मुबारकबाद। मेरा भतीजा और मेरी बहू, भतीज बहू दोनों गए हैं, जो यहाँ मेरे साथ ही होते हैं, अहमद अजीज़ अब्बासी और उनकी शरीक हयात हमारी प्यारी सी बिटिया साइमा नसीर, और दोनों बाकायदा रबते में हैं। कल मेरी लास्ट उनसे जो पैगाम मुझे मिला था कि कल इंशाल्लाह वो मीना के लिए रवाना हो गए थे। तमाम ही उज्जाज इकराम कल रवाना हुए होंगे। बस दुआ करता हूँ कि न सिर्फ अहमर और साइमा आपको, बल्कि हमारी भाभी साहिबा अयूब चौहान साहब की और उनके साहबजादे और तमाम वो हुज्जाज इकराम जिन्हें अल्लाह ताला ने, ये तो अल्लाह ताला के मेहमान हैं, इन मेहमानों पर अपना करम और फजल जारी रखे और इनके तमाम अरकान में अपने करम से और अपने फजल से आसानियां फराहम फरमाए और उनकी सही और काविश को कबूलियत का शर्फ बख्शे। और चलते हैं ओल्डहम, अयूब चौहान साहब का तोहफा उनकी नज़र करते हैं।

और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमारी बहुत ही प्यारी सी बिटिया सरोज खालिद तशरीफ लाई हैं। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए, सेहत से रखे और अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे। यहाँ टेम्परेचर 34 सेंटीग्रेड है, लेकिन हमारी इस प्यारी सी बिटिया की आमद ने टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया है। हम दिल की गहराइयों से सरोज खालिद आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरे हाल तो ठीक हैं प्यारी बिटिया, आप बताइए आपके क्या हाल चाल हैं। बहुत दुआएं करवाई हैं तुमने, उसका बिल मैं अलैदा तुम्हें इंशाल्लाह रवाना करूंगा, क्योंकि भाई अब तो ज़माना जो है वो दुआओं के लिए भी माल खर्च करना पड़ता है। बहरहाल अल्लाह का शुक्र यह है कि हमारी दुआएं कारामत साबित हुई हैं। हमारी बिटिया एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरी है और उनकी आमद इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने हम सब की दुआओं को कबूल कर लिया है। बिटिया, हमने बहुत मरतबा यहाँ हवा के दोष पर अपने तमाम सामईन और नाज़रीन से आपकी दुआ के लिए दरख्वास्त की थी। पता नहीं किसके उठे हुए हाथ और किसकी वो ज़बान और वो दुआ और कौन वो मुस्तजबुल दावात था कि जिसकी वजह से आज हमारी बिटिया हमारे प्रोग्राम में शामिल है। सरोज, हमें बहुत खुशी हुई कि आप आई हैं और हमें ज़रूर बताइए कि आप क्या सुनना चाहती हैं। आपकी आमद इस बात की नवीद दे रही है कि हमारी बिटिया अब रूबर सेहत है। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। और दोस्तों, अब चल रहे हैं हमारी मोहतरम लिसनर जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर

दोस्तों, आप तो समझते होंगे ये बड़ा आसान है कि बात कर लेना और लोगों से उनके जवाब दे देना, ये बड़ा मुश्किल काम है। और इस पोजीशन में कि टेम्परेचर 34-35 है, 34 तो गारंटीड है, ये सामने ही मौजूद है, सो इसमें बोलते के बाद हलक एकदम खुश्क हो जाता है। और मेरा ख्याल ये बॉटल है मेरे पानी की, ये 6 पी चुका हूँ और फिर ये अख्तिताम पर है, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अब हम अपनी काबिल एहतराम लिसनर डॉक्टर माहरुख साहिबा, जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम की जीनत और तौकीर बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाती हैं और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए वो आगाज़ प्रोग्राम में ही तशरीफ़ ले आती हैं, लेकिन लंच ब्रेक में वो अपना तोहफ़ा, और वो तोहफ़ा जो वो तमाम सुनने वालों और देखने वालों के नाम लाई हैं, वसूल करती हैं। तो आज उन्होंने सुरूर बारा बंकवी का ये कलाम आपकी मोहब्बतों, चाहतों और प्यार के नाम भेजा है कि ये जहान में रंगो निखत, ये फ़ज़ा ये चांद तारे, क्या तजबीहात हैं साहब, ये जहान में रंगो निखत, ये फ़ज़ा ये चांद तारे, बहज़ार पर्दादारी तेरे हुस्न के इशारे, ये जहान रंगो निखत, ये फ़िज़ा ये चांद तारे, बहज़ारे पर्दादारी तेरे हुस्न के इशारे, ये झुकी झुकी निगाहों के ये मोतबर इशारे, मेरी ज़िंदगी का सामा मेरी मौत के सहारे, ये फरेब लाला ओ गुल, क्या तस्बीहात हैं साहब, डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत इंतखाब है, ये फरेब लाला ओ गुल, ये तिलिस्म माह ओ अंजुम, ये फरेब लाला ओ गुल, ये तिलिस्म माह ओ अंजुम, मेरी खुश निगाहियों के हैं लतीफ़ इस्तारे, वाह वाह वाह वा, क्या खूबसूरत शेर है, ये फरेब लाला ओ गुल, ये तिलिस्म माह ओ अंजुम, मेरे खुश निगाहियों के हैं लतीफ़ इस्तारे, ये नज़र नज़र ये बंदिश, ये कदम कदम ये गर्दिश, वाह वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब क्या इंतखाब है, सुरूर बारा बंकवी मरहूम अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, ये नज़र नज़र ये बंदिश, ये कदम कदम ये गर्दिश, कोई ताबा के खुदाया यूँ ही ज़िंदगी गुजारे, इसी एक उम्मीद पैहम पे ये सांस चल रही है, इसी एक उम्मीद पैहम पे ये सांस चल रही है कि कभी सरवर शायद कोई बढ़ के खुद पुकारे, ये जहान रंगो निखत, ये फ़ज़ा ये चांद तारे, बहज़ार पर्दादारी तेरे हुस्न के इशारे, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब बेइंतहा खूबसूरत इंतखाब, जितनी दाद दी जाए कम है। और अब वो तोहफ़ा जो डॉक्टर साहब ने आज सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, आपके कलाम को हमारी बिटिया, आपने जो कलाम मुंतखब किया है उसको हमारी बिटिया सरोज खालिद ने बेइंतहा पसंद फरमाया है कि डॉक्टर साहब वाह वाह। लीजिए अब चलते हैं उस गीत की जानिब जो डॉक्टर साहब लंच ब्रेक में आज सुनना चाहती हैं, गीत भी लाजवाब है डॉक्टर साहब, पसंद आला, वाह वाह वाह।

बेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों

0: गहराइयों से ईद मुबारक मैनिंगहम सुपर स्टोर्स कॉलराइज रोड ब्रैडफोर्ड
1: मुबारक ईद मुबारक
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
12: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
12: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
13: बालियां अंगूठियां और हार
12: जो दुल्हन करे सिंगार
13: आज ही मामू काके की दुकान
12: खालिस सोने की पहचान
13: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
12: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
13: आपकी शान
12: हमारी आन
13: क्वालिटी की पहचान
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहां से लूं
14: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
13: सोफी ज्वेलर्स
14: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
13: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
15: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
16: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
17: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनिंगहम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
16: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगहम सुपर स्टोर मैनिंगहम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD88AX फोन ब्रैडफोर्ड 495555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगहम सुपर स्टोर
17: मैनिंगहम सुपर स्टोर
18: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
18: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
19: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
3: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
4: और आइए दोस्तों इस गर्म तरीन दिन कहा जा रहा है कि 1944 के बाद ये गर्म तरीन

इन है यहाँ बेडफोर्ड में, और इधर उधर के भी यही हालात मिल रहे हैं। अब सब जो है कि सबसे गर्म कौन सा शहर रहा बरतानिया का, इसका अभी तक मुझे इल्म नहीं है। इंशाल्लाह घर पे जब खबरें सुनूंगा जाके तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और अब हम चल रहे हैं अपनी बिटिया सरोज खालिद के तोहफे की जानिब। सरोज एक बहुत ही बेकायदा शायर हैं बेटा, मुझे पता है कि आपको शेर व अदब से गहरा लगाव है। उनका नाम है रिफत अब्बास, बहुत ही बेकायदा गैर मारूफ शायर हैं वो। तो उनका एक कता मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ कि ज़िंदगी उलझनों में गुजरेगी, मसले हल ना हो सकेंगे कभी। ज़िंदगी उलझनों में गुजरेगी, मसले हल ना हो सकेंगे कभी। और आप तन्हा न छोड़िएगा हमें, हम मुकम्मल ना हो सकेंगे कभी। ज़िंदगी उलझनों में गुजरेगी, मसले हल ना हो सकेंगे कभी। और आप तन्हा न छोड़िएगा हमें, हम मुकम्मल ना हो सकेंगे कभी। और उन्हीं का एक शेर याद आ गया कता कि खुदा करे कि तू उम्र जाविदा पाए। दुआया कता है, वो तुम्हारे नाम कर रहे हैं वो, कि खुदा करे कि तू उम्र जाविदा पाए, गमों यास और रंज कभी करीब ना आए। तू मुस्कुराए तो अहबाब मुस्कुरा उठें, तेरा वजूद बहारों की जान कहलाए। और पेश खिदमत है वो गीत जो मेरी बिटिया को भी पसंद है और मेरे भी दिल के बहुत करीब है, सुनते हैं सब मिलके।

दोस्तों, दो फरमाइशें हमें पूरी करनी हैं। हमारी हो सकता है कि किसी भी लम्हे हमारी जो पेज है वो ऑफ हो जाए, तो पहले से आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि फर्दर चार्जेस की फ़ोन इजाज़त नहीं दे रहा गर्मी की वजह से। योर फ़ोन इस टेम्परेचर इज़ टू हाई, चार्जिंग विल कंटिन्यू व्हेन द टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल। तो बहरहाल चंद मिनट बाकी हैं, तकरीबन 7-8 मिनट हैं, देखते हैं कहाँ तक ये हमारा साथ देता है। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं डनकास्टर सिटी, आखिरी लम्हात में हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं जनाब सिराज मुनीर साहब। और सिराज मुनीर साहब जो हैं ये डनकास्टर सिटी से हैं। आपकी मोहब्बत, चाहत और प्यार का बहुत शुक्रिया। यू आर लकी कि आपको मौका मिल गया अपनी पसंद का गीत सुनने का, वरना हम आपसे माजरत करते। आपका तोहफा हाजिर है, एले डनकास्टर को मेरा सलाम पहुँचे।

0: 6 7 7
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
4: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
5: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
4: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
5: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 2577 दुबई ज्वेलर्स
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
4: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रेडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
0: आम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
5: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 777
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
7: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
7: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
8: बालियां अंगूठियां और हार
7: जो दुल्हन करे सिंगार
8: आज ही मामू काके की दुकान
7: खालिस सोने की पहचान
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
8: आपकी शान
7: हमारी आन
8: क्वालिटी की पहचान
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवट लेन ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
9: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
8: सोफी ज्वेलर्स
9: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
8: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
10: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
12: ओपन 7 डेज 10 टिल 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पौंड ब्रेडफोर्ड 9627229622 9627222
11: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
16: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
17: Listen on your PC or laptop the best Asian music online

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
4: Pakistan Jewelers ki janib se sabhi sunne walon ko dil ki gehraiyon se Eid Mubarak. Quality ki pehchan.
5: Pakistan Jewelers, 1 Dupont Lane, Bradford, PD95ER01274491442.
4: Pakistan Jewelers.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: था, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274488777
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
2: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
3: बालियां अंगूठियां और हार
2: जो दुल्हन करे सिंगार
3: आज ही मामू काके की दुकान
2: खालिस सोने की पहचान
3: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
3: आपकी शान
2: हमारी आन
3: क्वालिटी की पहचान
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड BD95VR 01274491442
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
4: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
3: सोफी ज्वेलर्स
4: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
3: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
9: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
10: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
11: Listen on your PC or laptop the best Asian music online

0: Thank you.
1: नेहा, कल जो गलती की उसे दोहराऊंगा नहीं। आज फूल और खत दोनों तुम्हारे हाथ में हैं। जो बात कल मेरा फूल नहीं कह पाया वो आज ये खत कहेगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो नेहा। अगर तुमने फूल रख लिया तो मैं समझ लूंगा कि मैं भी तुम्हें
0: किसने दिया

0: श्रीमान बिरजू जी, जानकर खुशी हुई कि हम आपको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और अपनी गलती मानने की हिम्मत रखते हैं सबके सामने। हम ये तो आपसे होगा नहीं, इसलिए ये फूल आप ही रख लें।
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.

0: और साइड की तरफ से ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
4: Pakistan Jewelers ki janib se sabhi sunne walon ko dil ki gehraiyon se Eid Mubarak. Quality ki pehchan.
5: Pakistan Jewelers, 1 Dupont Lane, Bradford, PD95VR 01274-491-442.
4: Pakistan Jewelers.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274-477-257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885-428-3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
3: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

बेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid Al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप कौंसिल या
9: दिल अज़हा आई स्टे क्लोज टू व्हाट मैटर्स विद रेमिटली लाइक सेंडिंग अ लिटिल समथिंग टुवर्ड्स अम्मीज फेमस बिरयानी वेयर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर सेकंड्स रेमिटली वन इजी ऐप टू सेंड मनी

0: वेबसाइट की तरफ से ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
4: Pakistan Jewelers ki janib se sabhi sunne walon ko dil ki gehraiyon se Eid Mubarak. Quality ki pehchan.
5: Pakistan Jewelers, 1 Dupont Lane, Bradford, PD95VR01274491442.
4: Pakistan Jewelers.
6: And the winner is...
7: And the winner is...
8: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
9: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
14: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
13: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
14: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
13: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
14: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
14: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब
10: स्टेशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के

0: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर्स से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
1: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, PD9 5VR 01274 491 442,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 4QU 01274 056 014, सोफी ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
0: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: Ya Allah,
3: jo shakhs rozana 1000 martaba is isme mubarak ko padhega, inshaallah uske dil se tamam shak o shuba dur ho jayenge aur azm o yaqeen ki quwwat naseeb hogi. Jo la ilaaj mareez ba kasrat is isme mubarak ka wird rakhe aur iske baad shifa ki dua mange, usko shifae kamil naseeb hogi.
2: Ya rahman,
3: behad rehm karne wala. Jo shakhs rozana har namaz ke baad 100 martaba is isme mubarak ko padhega, uske dil se inshaallah har qisam ki sakhti aur ghaflat dur ho jayegi aur iska hafza qawi ho jayega.
2: Ya rahim,
3: eh bada meherban. Jo shakhs rozana har namaz ke baad 100 martaba is isme mubarak ko padhega, tamam dunyavi aafaton se inshaallah mehfooz rahega aur tamam makhlooq us par meherban ho jayegi.
2: Ya malik,
3: ae haqeeqi badshah. Jo shakhs rozana subah ki namaz ke baad kasrat se is isme mubarak ko padhega, Allah taala use ghani farma denge.
2: Ya quddus,
3: eh buraiyon se paak zaat. Jo shakhs is isme mubarak ka wird rozana 100 martaba karta rahega, usse Allah taala tamam tafarruqat se nijat denge.
2: Ya salam,
3: eh be-ebzad. Jo shakhs kasrat se is isme mubarak ko padhta rahega, inshaallah tamam aafaton se mehfooz rahega. Jo shakhs 160 martaba is isme mubarak ko padh kar bimar par dam karega, Allah taala use sehat o shifa ata farmayenge.
2: Ya mu'min,
3: ae amno iman dene wale. Jo shakhs kisi khauf ke waqt 631 martaba is isme mubarak ko padhega, inshaallah har tarah ke khauf aur nuksan se mehfooz rahega.
2: Ya muhaimin,
3: ae nigehban. Jo shakhs ghusl karke do rakat namaz padhe aur sidqe dil se 100 martaba is isme mubarak ko padhega, to Allah taala uska zahir o batin paak farma denge. Aur jo shakhs 115 martaba padhega, to inshaallah poshida cheezon par matla ho.
2: Ya aziz,
3: ae sab par ghalib. Jo shakhs is isme mubarak ko namaz fajr ke baad 41 martaba padhta rahe, wo inshaallah kisi ka mohtaj na ho aur zillat ke baad izzat paaye.
2: Ya jabbar,
3: ae sabse zabardast. Jo shakhs is isme mubarak ka wird baqaidgi se karta rahega, उसे कोई उसकी मर्जी के खिलाफ किसी काम के लिए मजबूर नहीं कर सकता, और ना उस शख्स को तशद्दुद, सख्ती और दुश्वारी का सामना करना पड़े। ऐह बड़ाई और बुजुर्गी वाला, जो शख्स कसरत से इस इस्मे मुबारक का विद रखेगा, अल्लाह ताला उसे इज्जत और बड़ाई अता फरमाएंगे, और अगर हर काम की इब्तिदा में इस इस्मे मुबारक को पढ़े तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाब होगा। ऐह पैदा करने वाला, जो शख्स 7 रोज तक मुतवातिर 100 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह तमाम आफतों से महफूज रहेगा। जो शख्स हमेशा इस इस्मे मुबारक को पढ़ता रहे तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता पैदा कर देते हैं जो उसकी तरफ से इबादत करता है और चेहरा मुनव्वर रहता है।
2: या बारी,
3: ऐ जान डालने वाला, अगर बांझ औरत 7 रोज रोजे रखे और पानी से इफ्तार करने के बाद 21 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़े तो उसे इंशाअल्लाह औलादे नरीना नसीब हो।
2: या मुसव्विर,
3: ऐ मखलूकात की सूरत गरी करने वाला, अगर बे औलाद औरत इस इस्मे मुबारक पर यूं अमल करे के 7 रोजे रखे और हर रोज इफ्तार के वक्त इन 3 नामों को, यानी या खालिक, या बारी, या मुसव्विर, 21 मर्तबा पढ़कर एक गिलास पानी पर दम करे और इस पानी से इफ्तार करे तो इंशाअल्लाह उसे औलाद हासिल होगी। ऐ दरगुजर और पर्दा पोशी करने वाला, इस इस्मे मुबारक का बाकायदगी से विर्द करने से अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल होती है।
2: या क़हार,
3: ऐ सबको अपने काबू में रखने वाला, जो शख्स दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस इस्मे मुबारक को पढ़े तो इंशाअल्लाह दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से दूर हो जाएगी और खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ऐसा कुछ अता करने वाला, जो शख्स फिक्रो फाका में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस इस्मे मुबारक को पढ़ा करे या लिखकर अपने पास रखे या चाश्त की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ा करे तो अल्लाह ताला फिक्रो फाका से उसको हैरत अंगेज तरीके पर निजात देंगे।
2: या
3: बहुत बड़ा रोजी देने वाला, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का विर्द करता रहे परवरदिगारे आलम उसकी किफालत अपने जिम्मे ले लेता है।
2: या फत्ताह,
3: बहुत बड़ा मुश्किल कुशा, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का विर्द बाकायदगी से करता रहेगा उसका दिल खोल दिया जाएगा और उसे पता नसीब होगी। ऐ बहुत वसी इल्म वाला, जो शख्स कसरत से इस इस्मे मुबारक का विर्द करेगा, अल्लाह ताला उस पर इंशाअल्लाह इल्म व मारिफत के दरवाजे खोल देंगे।
2: या काबिग,
3: ऐ रोजी तंग करने वाला, जो शख्स रोटी के चार लुकमों पर इस इस्म को लिखकर 40 दिन तक खाएगा, भूख प्यास जख्म और दर्द वगैरह की तकलीफ से महफूज रहेगा।
2: या बासिक,
3: ऐ रोजी फराह करने वाला, जो शख्स नमाज़े चाश्त के बाद आसमान की जानिब हाथ उठाकर रोजाना 10 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा और मुंह पर हाथ फेरेगा, अल्लाह ताला उसे गनी बना देंगे और कभी किसी का मोहताज ना होगा।
2: या खाफिग,
3: ऐ बस कर देने वाला, जो शख्स रोजाना 500 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजतें इंशाअल्लाह पूरी और मुश्किलात दूर फरमा देंगे। जो शख्स 3 रोजे रखे और चौथे रोज एक जगह बैठकर 70 बार इस इस्मे मुबारक को पढ़े, इंशाअल्लाह दुश्मन पर फतेह याब होगा। ऐ बुलंद कर देने वाला, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का दिन और रात में 101 मर्तबा विर्द करेगा, अल्लाह ताला उसको इज्जत दौलत और अहलियत में बुलंदी अता करेंगे।
2: या मुइज,
3: ऐ इज्जत देने वाला, जो शख्स पीर या जुम्मे के दिन बाद नमाज मगरिब 140 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इंशाअल्लाह लोगों में बा इज्जत और बा वकार बना देंगे।
2: या मुजिल,
3: ऐ जिल्लत देने वाला, जो शख्स 75 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़कर सरबा सुजूद होकर दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसको हासिदों जालिमों और दुश्मनों के शर से महफूज रखेंगे।
2: या समीअ,
3: ऐ सब कुछ सुनने वाला, जो शख्स जुमरात के दिन चाश्त की नमाज के बाद 500, 100 या 50 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ेगा, इंशाअल्लाह उसकी दुआएं कबूल होंगी, दरमियान में किसी से बात हरगिज ना करे।
2: या बसीर,
3: ऐ सब कुछ देखने वाला, जो शख्स जुम्मे की नमाज के बाद 100 मर्तबा इस इस्मे मुबारक को पढ़ा करे, अल्लाह ताला उसके निगाह में इंशाअल्लाह रोशनी और दिल में नूर पैदा फरमाएंगे।
2: या हकम,
3: ऐ हाकिमे मुतलक, जो शख्स इस इस्मे मुबारक का विर्द कई दफा रात को करता रहेगा तो अल्लाह ताला उस पर बहुत से राज सरबस्ता खोल देंगे।
2: या अदल,
3: اے سرتاپا انسان، جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں روٹی کے 20 ٹکڑوں پر اس اسم مبارک کو لکھ کر کھائے گا، اللہ تعالی مخلوق کو اس کے لیے مسخر فرما دیں گے۔

0: रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथागराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: मुबारक ईद मुबारक।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स की जानिब से सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुपट लेन ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: And the winner is
7: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
12: दुल्हन वो जो पिया मन भाए
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
12: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
13: बालियां अंगूठियां और हार
12: जो दुल्हन करे सिंगार
13: आज ही मामू काके की दुकान
12: खालिस सोने की पहचान और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
12: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां कंगन कांटे
13: बालियां अंगूठियां और हार
12: जो

0: ढूंढूं।
1: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
0: सोफी ज्वेलर्स?
1: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम। लेडी स्टाफ
0: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
6: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
6: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
9: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: सेट की तरफ से ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak.
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स की जानिब से सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुपट लेन ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: And the winner is
7: your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
12: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 13

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
9: यू आर लिसनिंग टू
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 77।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
12: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
13: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
12: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
13: बालियां अंगूठियां और हार,
12: जो दुल्हन करे सिंगार,
13: आज ही मामू काके की दुकान,
12: खालिस सोने की पहचान,
13: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
12: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
13: आपकी शान
12: हमारी आन,
13: क्वालिटी की पहचान।
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
13: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
14: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
13: सोफी ज्वेलर्स?
14: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम।
13: और कहाँ से?
14: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक पर सोफी ज्वेलर्स के गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
13: सोफी
14: नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: इधर सैयद की तरफ से ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स की जानिब से सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुप्पट लेन ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: And the winner is
7: your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
12: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3 4 9, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
10: क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 488 777।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाए
12: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
11: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
12: बालियां अंगूठियां और हार
11: जो दुल्हन करे सिंगार
12: आज ही मामू काके की दुकान
11: खालिस सोने की पहचान
12: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
12: आपकी शान
11: हमारी आन
12: क्वालिटी की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड BD95ER 01274 491 442
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑक लेन BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
14: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
15: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
14: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
15: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
16: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music on
16: Asian Radio, medium wave 1413 AM, Bradford Asian Radio.
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: वेबसाइट की तरफ से ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो के सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak.
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स की जानिब से सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुपट लेन ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: And the winner is
7: your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटली हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
12: दुबई ज्वेलर्स। व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड

रेड फोर्ट एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to Bradford Asian Radio.
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
9: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD71HR 01274 48 77।
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: दुल्हन वो जो पिया मन भाई
12: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए
11: नित नए डिजाइन के सेट चूड़ियां कंगन कांटे
12: बालियां अंगूठियां और हार
11: जो दुल्हन करे सिंगार
12: आज ही मामू काके की दुकान
11: खालिस सोने की पहचान
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
11: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए
12: आपकी शान
11: हमारी आन
12: क्वालिटी की पहचान
11: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 डुकवर्ट लेन ब्रैडफोर्ड BD95VR 01274 491 442
12: पाकिस्तान ज्वेलर्स अरे बेटी की शादी करीब आ रही है समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ
13: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है
12: सोफी ज्वेलर्स
13: सोफी नहीं सोफी नित नए डिजाइन के जेवरात जिनकी क्या है बात इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम लेडी स्टाफ
12: सोफी ज्वेलर्स 121 ऑकलैंड BD94QU 01274056014 सोफी ज्वेलर्स
14: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
15: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर
16: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनिंगम स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
15: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD88AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
16: मैनिंगम सुपर स्टोर
15: मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड BD88AX फोन ब्रैडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश

0: करके सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से दिली ईद मुबारक।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: Mubarak Eid Mubarak.
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स की जानिब से सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्वालिटी की पहचान
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुप्पट लेन ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
6: And the winner is
7: your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
12: दुबई ज्वेलर्स।
14: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
15: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
14: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio.